0: रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान, इसका 235वां भाग आप सुन सकेंगे। आज सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता।

लोग सुनिएगा रात 8:15 से। रात 9 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 से सुनेगा छाया गीत, आलेख है उस और ममता सिंह का, प्रस्तुत करता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। रात 11 रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम।

0: की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी, जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के
1: श्लोक सुनिएगा रात 8:15 से। रात 9 बजे से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख है उस और ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। रात 11 बजे रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।
0: भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

0: रिकॉर्ड जी आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे वो, हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
1: हिंदुस्तानी
0: संगीत।
1: अच्छा।
0: उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे, मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
1: हिंदुस्तानी संगीत
0: सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
1: संगीत विद्वान,
0: संगीत विद्वान।

0: रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए?
1: वो तो किसी का आवाज पतला रहते हैं, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहते, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो रियाज करना। हमको तो हमारे गुरुजी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। फोन रिकॉर्ड जी आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा वो गाने लगे
0: हिंदुस्तानी
1: संगीत।
0: अच्छा।
1: उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
0: हिंदुस्तानी संगीत
1: सिखाएंगे। बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गए, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
0: संगीत विद्वान।
1: बाद में गांधार के बाद मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उस वक्त। रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
0: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो, वहाँ संगीत की शिक्षा, यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
1: बढ़ बहुत पाता। कम, हमने तो देखे ही नहीं ऐसे, क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना, कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरुआत होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से, आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं, साल में एक गायक उसमें से निकलते हैं, बहुत कुछ होगा।
0: हाँ। तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
1: वो? हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता, हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
0: अच्छा।
1: आजकल उनको पता है गंगू भाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी, वो जो सुनने वाले वही आते हैं, मुझे कोई फरमाइश नहीं करते।
0: अच्छा।
1: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम, मराठी गजल ठुमरी हमने, मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
0: अच्छा।
1: ये मुझे मेरा ये है वो।
0: अच्छा। हाँ,
1: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
0: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?

आए दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रतिदिन की भांति दिवस विशेष और कई जानकारियों के साथ आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं। दिवस विशेष को लेकर के हम बात करते हैं दोस्तों। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का घटना हुई थी। यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा क्षुद्र प्रभाव था, जिसने 830 वर्ग मील के क्षेत्र में फैले करीब 8 करोड़ पेड़ों को नष्ट कर दिया था। इसी विनाशकारी घटना की याद में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रहों के टकराने से होने वाले खतरों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना और पृथ्वी के निकट किसी वस्तु के आने के विश्वसनीय खतरे की स्थिति में वैश्विक स्तर पर भी जाने जाने वाली संकटकालीन संचार कार्यवाही

पारदर्शी और जवाबदेह होने की जरूरत है, तभी हमारा राष्ट्र और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, और ये प्रत्येक देश की पहचान होनी चाहिए।

0: जलवायु और शिक्षा, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन से निपटने में शिक्षा एक जरूरी किरदार निभाती है। यह लोगों को जागरूक बनाती है और सस्ता संवेदनशील जीवन जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन खुद भी शिक्षा को प्रभावित कर सकता है। तूफान, बाढ़ या अन्य बुरे मौसम के कारण स्कूल बंद हो जाते हैं और कई बार बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई रुक जाती है। गरीबी और बढ़ती है और कई बार बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। इसलिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सके। क्या आप जानते हैं, 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: श्रोताओं, सामने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार झालावाड़। दोस्तों, आज ब्रिटिश कालीन भारत के महान शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी, और कहें तो भारतीय वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी की याद का दिन है। आप ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। 4 सितंबर 1825 को मुंबई में जन्मे नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन के लोगों को

हम कोई कृपा की याचना नहीं कर रहे हैं, हमें तो केवल न्याय चाहिए। आरंभ से ही अपने प्रयत्नों के दौरान मुझे इतनी असफलताएं मिली हैं जो एक व्यक्ति को निराश ही नहीं बल्कि विद्रोह भी बना देने के लिए पर्याप्त थी। पर मैं हताश नहीं हुआ और मुझे विश्वास है कि उस थोड़े से समय के भीतर ही, जब तक मैं जीवित हूँ,

0: नदियों को मजबूत बनाना जरूरी है ताकि हम क्लाइमेट के असर का सामना कर सकें। क्या आप जानते हैं 2019 में दुनिया भर के सिर्फ 53% युवाओं ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: श्रोताओं, सामने ट्यून किया है आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार झालावाड़। दोस्तों, आज ब्रिटिश कालीन भारत के महान शिक्षा शास्त्री, अर्थशास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी और कहें तो भारत

स्वागत है आप सभी का फिर से नमस्कार झलावड़ कार्यक्रम में। और आइए अब एक नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम उनके प्रसारण समय पर। नमस्कार झलावड़ कार्यक्रम के तुरंत पश्चात यानी 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत हम आपको एक बार पुनः सुनाएंगे 6:05 पर। प्रातः 8 समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रगति पथ। आज इस कार्यक्रम में कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं के बारे में हेमंत चौरसिया वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरगांव सचिव स्थानीय संघ स्काउट गाइड झालावाड़ से शाली नेपाली की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। 8:30 पर महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी गणगौर। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर चर्चा होगी। सादिका अहमद से ली गई भेंटवार्ता आपको सुनवाई जाएगी महिलाओं के कानूनी अधिकार विषय पर। जानकारी में महिला उद्यमिता योजना के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। दोपहर 12 आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5 हमारे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवावाणी होगा। चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि। ज्ञान विज्ञान में चंद्रमा और मंगल मिशन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। चिराग जल रहे युवा डायरी में आप आज सुनेंगे काव्य पाठ जीवन की अनुभूतियां।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी, जिसमें कि आज कल्याण जी साहब का जन्मदिन है। आपको बताएं दोस्तों कि

जी हाँ दोस्तों, सरस्वती चंद्र कोरा कागज हिमालय की गोद में, उपकार जंजीर, बेराग, डॉन, कुर्बानी, त्रिदेव, ऐसी कई अनगिनत फिल्मों के लिए आपने संगीत रचा, तभी जाकर के आप महान संगीतकारों की श्रेणी में गिने जाने लगे। एक बार पुनः कल्याण जी वीरशाह को जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई।

0: और दोस्तों इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त करने के अपने दोस्त लोकेश को अनुमति दें। नमस्कार। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारत

0: ये फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
1: इन फैसलों का उद्देश्य

0: की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मूज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन

0: श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को
1: एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की

0: मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान

0: मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20

0: शालिनी पारिक की बातचीत।
1: सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रगति पथ में। यह वह मंच है जहां हम बात करेंगे विकास की, सफलता की, सकारात्मक सोच की और उन प्रयासों की जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। राह कठिन हो, मंजिल दूर हो, फिर भी कदम बढ़ाते रहिए स्काउट गाइड की।
2: नमस्कार,
1: सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जैसा कि हमारा आज का विषय है स्काउट गाइड योजनाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन योजनाएं, तो सबसे पहले मैं जानकारी इसी विषय पर चाहती हूँ कि स्काउट गाइड योजनाएं क्या है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी।

0: सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका अपने प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रगति पथ में। यह वह मंच है जहां हम बात करेंगे विकास की, सफलता की, सकारात्मक सोच की और उन प्रयासों की जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। राह कठिन हो, मंजिल दूर हो, फिर भी कदम बढ़ाते रहिए स्काउट गाइड की।
1: नमस्कार,
0: सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारा आज का विषय है स्काउट गाइड योजनाएं और कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन योजनाएं, तो सबसे पहले मैं जानकारी इसी विषय पे चाहती हूँ कि स्काउट गाइड योजनाएं क्या है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। शिक्षण प्रदान करके रोजगार के योग्य बनाना है, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अंतर्गत चलाई जाती है। इसके तहत युवाओं को मुफ्त में कौशल प्रशिक्षण और साथ में प्रमाण पत्र प्रमाणन दिया जाता है ताकि वो अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकें। इसी के अंतर्गत आप देखें भारत सरकार भी और शिक्षा मंत्रालय भी इसके अंतर्गत आजकल अपने पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये भी लागू किया है कि हम बचपन से ही विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत कुछ कौशल विकास पाठ्यक्रम इस तरह के शामिल करें कि केवल बच्चा शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित न रह जाए, बल्कि वो साथ में कुछ ऐसे हुनर, ऐसी कला का विकास स्वयं के अंदर करे जिससे वो आगे जाकर के अपना रोजगार सृजन करने में भरपूर मदद पा सके। उसी के अंतर्गत अभी आप देखें कि वर्तमान में भारत स्काउट गाइड की जब से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होते हैं 17 मई से और ग्रीष्मावकाश समाप्ति तक, हम हमेशा हर वर्ष अभिरुचि केंद्र हर जिला स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर ये चलाए जाते हैं। तो अभी झालावाड़ जिले के लगभग 8 ब्लॉक में समर कैंप के रूप में, अभिरुचि केंद्र के रूप में ये चालू है। झालावाड़ में जो ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर अभिरुचि केंद्र चल रहा है वो राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा झालावाड़ में चल रहा है और उसका शिविर प्रभारी अभी वर्तमान में मैं ही हूँ। और साथ ही मैं बताऊँ कि ये शिविर बच्चों के लिए इतना लाभकारी है क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रेड से जुड़ी हुई कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं जो उनका कौशल विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर के लिए ब्यूटिशियन और केश सज्जा का कोर्स, मेहंदी का कोर्स, कंप्यूटर जो बेसिक प्रशिक्षण होता है वो बच्चों को दिया जा रहा है, ज्वेलरी मेकिंग से संबंधित कोर्स, पेपर मेशी आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके साथ साथ आपका इंग्लिश स्पोकन का कोर्स और ड्राइंग पेंटिंग का कोर्स, शास्त्रीय नृत्य, गैर शास्त्रीय नृत्य, संगीत में गायन और वादन दोनों तरह का, इस तरह से कुल 9 ट्रेड के अंतर्गत हम जो है छात्र छात्राओं को जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई युवतियां हैं, विवाहित महिलाएं हैं, उनको भी हम इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल करते हैं और मात्र सामान्य रजिस्ट्रेशन शुल्क पर वो एक सरकारी प्रमाण पत्र भी जो है प्राप्त करते हैं और साथ ही अपना रोजगार सृजन करने में भरपूर मदद प्राप्त करते हैं। तो स्काउट गाइड जो है युवाओं में और बच्चों में, विद्यार्थियों में कौशल विकास, स्वावलंबन उत्पन्न करने के लिए भी लगातार अपनी योजनाओं पर काम कर रहा है।
0: यहाँ आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि इसमें महिलाएं भी भाग ले सकती हैं।
1: जी
0: हेमंत जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे यहाँ और है कि जैसा आपने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर ग्रीष्म अवकाश में ही लगाए जाते हैं, अगर इसका लाभ हम पूरे वर्ष उठा सकें तो ऐसी कोई योजनाएं नहीं है सरकार की?
1: बिल्कुल, सरकार की योजनाएं हैं। मैं आपको बताऊं, पंजाब नेशनल बैंक और कई प्रकार के उद्यमिता विकास मंत्रालय के द्वारा साल भर में कई संस्थाओं के माध्यम से मिलकर इस कौशल विकास प्रशिक्षण पर काम किया जाता है और 150 घंटों से लगाकर कई घंटों तक के अलग अलग प्रशिक्षण शिविर हैं जिनमें आवासीय भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में कौशल विकास मंत्रालय द्वारा ये सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है कई बैंकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से। चूंकि स्काउट गाइड बीच बीच में अपने कई सारे शिविर, जैसा कि मैंने आपको बताया, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति अवार्ड, एडवेंचर कैंप और कई हम स्वच्छता और आपदा मित्र, युवा आपदा मित्र संबंधी योजनाएं चलाते हैं, ये सब भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन मुख्य योजनाओं का ही क्रियान्वयन करने के लिए हम उसे पार्ट रूप में, उनका एक अंग बन करके उसे क्रियान्वित करते हैं। तो जो आपने कहा ये महिलाओं के लिए, जैसे आपने मोबाइल ठीक करने वाला जो योजना है, अपने पर्स लेदर बैग तैयार करने वाला जो है, इसके अलावा मेहंदी सिलाई बुनाई के जो और भी कोर्स हैं, ये सारे प्रशिक्षण जो है कई प्रकार के बैंकिंग, जो पंजाब नेशनल बैंक है वो इस तरह की सेवाएं दे रहा है और यदि महिलाएं चाहती हैं तो वो उनसे संपर्क करके अपने बीच में भी जब उनको समय मिलता है, क्योंकि ये अलग अलग समय पर कई बार बार आयोजित किए जाते हैं, तो जो लोग कोई उचित

0: समय ना मिलने पर यदि उसको ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं तो वो बाद में समय पर अपना ज्वाइन कर सकते हैं।
1: ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें दी। एक शब्द का आप बार बार प्रयोग कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन।

0: केतु और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी आपन सभी के ताई होव। ई दिवस की शुरुआत 2016 से यूनाइटेड नेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर की गई थी। सरकार वैज्ञानिक और आम जनता का सहयोग से संभावित क्षुद्र ग्रह के टकराव से बचाव करबा की तैयारी कर सके, इसलिए आज को दिन मनायो जाओ छ। ई मनाबा के पाछे जो उद्देश्य छे वह छे कि लोगों में जागरूकता बढ़े। उल्का पिंड, धूमकेतु और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी आपन सभी के ताई होव। ई दिवस की शुरुआत 2016 से यूनाइटेड नेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर की गई थी। सरकार वैज्ञानिक और आम जनता का सहयोग से संभावित क्षुद्र ग्रह के टकराव से बचाव करबा की तैयारी कर सके, इसलिए आज को दिन मनायो जाओ छ। ई दिन कई कार्यक्रम किया जाओ छ, कई कार्यशालाएं भी आयोजित की जाओ छ, वैज्ञानिका के लिए सेमिनार भी आयोजित किया जाओ छ ताकि सभी में जागरूकता बढ़े और अंतरिक्ष आभा वाली धूमकेतु और उल्का पिंड सु अपना ताई होबा वाली हानिया सु भी बचा सक। क्षुद्र ग्रह चट्टान और धातु का बनया खगोलीय पिंड छ जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाओ छ। यह आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाओ छ। यो दिन केवल दिन या दिवस कोई न बल्कि यह एक विश्व चेतना आंदोलन छ। यो दिन अपनी याद दिलाओ छ कि अपनी अंतरिक्ष सु आभा वाला खतरा के प्रति सजग रहनी चाहिए और हमेशा वैज्ञानिक समझ तकनीकी प्रगति को साहत बेहद जरूरी छ।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: आज दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि भी छ। यहाँ को जन्म 4

पहला भारतीय छह जाना वैज्ञानिक और सांख्यिकी डेटा को उपयोग कर साबित करो कि ब्रिटिश नीतियाँ ही भारत की गरीबी को मुख्य कारण छे। और नौरोजी को जो कहो छो वो छो का मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सु पहले

पहला भारतीय छह जाना वैज्ञानिक और सांख्यिकी डेटा को उपयोग कर साबित करो कि ब्रिटिश नीतियाँ ही भारत की गरीबी को मुख्य कारण छे। और नौरोजी को जो कहो छो वो छो का मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सु पहली।

0: जो हमें जानकारी देंगे महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सादिका अहमद जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
0: सादिका जी, जैसे जो आज का हमारा विषय है वो है महिलाओं के कानूनी अधिकार, तो इस विषय के क्रम में जो सबसे पहला प्रश्न है वो मेरा ये है जानकारी के लिए, अपने यहाँ भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कौन कौन से संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं?
1: बहुत शुक्रिया आपने पूछा। अपने संविधान में महिलाओं के लिए भी विशेष अधिकार, जिसमें संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से लेके 19 तक महिलाओं के लिए विशेष अधिकार है, जैसे समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रॉपर्टी में बिल्कुल बराबरी का अधिकार और मातृत्व लीव, जो मैटरनिटी लीव होती है स्पेशल, उसका अधिकार और भी काफी सारे अधिकार हैं।
0: जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं वो क्या क्या हैं?
1: महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षक अधिनियम एक कानून है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक कानून है, कार्यस्थल पर महिलाओं का जैसे यौन उत्पीड़न या हैरेसमेंट से रोकने वाला अधिनियम है, एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, बाकी भारतीय न्याय संहिता में भी काफ़ी सारे अधिकार और कानून बनाए गए हैं जो विशेषकर महिलाओं के लिए हैं।
0: भारत में महिलाओं से संबंधित जैसे आप बता रहे हो दहेज प्रताड़ना है, महिलाओं को कार्यस्थली पे जो भी उनसे संबंधित जो अधिकार है, तो उसी तरह जैसे माँ है, बहन है, बेटी के रूप में कानूनी अधिकार, संपत्ति के हक में जो अधिकार है उनका भी आप विस्तार से बता सकती हैं?
1: महिलाओं को और बहन, बेटी, पत्नी और माँ के रूप में जो अधिकार है महिलाओं के लिए, जैसे पैतृक संपत्ति में अधिकार, वो जो पिता की संपत्ति है उसमें भी महिलाएं अपना अधिकार रखती हैं, और भरण पोषण से संबंधित जो पत्नी है उसको अपने पति से और ससुराल से भरण पोषण अपना गुजारा करने के लिए अधिकार है, एक ससुराल में घरेलू हिंसा से ना उनको घरेलू हिंसा से सुरक्षा का भी अधिकार है, और इसी तरह से दहेज मांगना या प्रताड़ित करना के विरुद्ध

0: में जगह भी मिलेगी और अपना भरण पोषण करने के लिए खर्चा भी मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी घरेलू हिंसा से। और आपने इसके आगे पूछा है कि जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए, तो इसके लिए भी 2013 में एक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न पोष अधिनियम करके एक अधिनियम पारित हुआ है, जिसमें महिलाओं के साथ अपने कार्यस्थल पर ऑफिस में या जहां भी वो जॉब करती है वहां पे कोई उनके साथ हेरेसमेंट या किसी तरह की प्रताड़ना या किसी भी तरह से परेशान करता है तो उससे भी सुरक्षा का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है। इसके आगे एक मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बना हुआ है, जिसकी जागरूकता महिलाओं में बहुत ही कम है या उसकी जानकारी कम होने के कारण कई महिलाएं जो जॉब में या प्रोफेशंस में होती है लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम वो अपने लिए स्पेशल लीव या अपने लिए और अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित वक्त जो होता है वो नहीं निकाल पाती, जो उसके लिए भी एक मातृत्व लाभ और एक मैटरनिटी लीव जो होती है स्पेशल वो 6 महीने की होती है वो आप ले सकते हो उसका लाभ, वो भी कानून बना हुआ है।
1: साधिका जी, ये तो हो गया हमारा कानूनी अधिकार जो सरकार ने या कोर्ट ने तय कर रखे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप हमारी बहनों को क्या सलाह या संदेश देना चाहती हैं आपकी भाषा में, जो कानूनी सलाह भी हो सकती है?
0: जी, मैं अपने तरफ से यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को सबसे पहले तो जागरूक होना और उसके बाद सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी अपने अधिकारों के और अपने सुरक्षात्मक कानूनों के बारे में तब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। तो मेरा संदेश यही है कि महिलाओं को सबसे पहले अपने शिक्षित होने पर और अपने कानूनों, अपने लिए जो कानून बने हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षित होने के साथ साथ अपने खुद भी पढ़ें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपनी बच्चों को और अपने फैमिली में जो भी है फैमिली मेंबर्स उनको भी जागरूक करें और महिलाओं को भी सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है, जिसे वो जागरूक होकर अपने लिए और सशक्त होने के लिए आवाज़ उठाएं। कहीं भी उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी बुरा बर्ताव या दुर्व्यवहार होता है तो उसे सहन करते ना

में जगह भी मिलेगी और अपना भरण पोषण करने के लिए खर्चा भी मिलेगा और सुरक्षा भी मिलेगी घरेलू हिंसा से। और आपने इसके आगे पूछा है कि जैसे कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए, तो इसके लिए भी 2013 में एक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न पोष अधिनियम करके एक अधिनियम पारित हुआ है, जिसमें महिलाओं के साथ अपने कार्यस्थल पर ऑफिस में या जहां भी वो जॉब करती

एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत स्वागत छे। और अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव में जानकारी की बाता में बात करेंगा राजस्थान महिला उद्यमी ऋण योजना के बारे में। आजकल स्वयं सहायता समूह द्वारा नारा सारा सामान बनाया जाओ छे, राखी हो, होली हो।

लोन और समूह में लगभग 30 लाख तक को लोन मल सकोगो। ई योजना सु लखपति दीदी की योजनाएं भी बढ़ावो मलगो। ई योजना के लिए जो जरूरी दस्तावेज छ वह छ आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी और गैर सरकारी संस्था को पंजीयन पत्र या उकी नियमावली की प्रति, स्वयं सहायता समूह की नियम प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड की प्रति और पासपोर्ट फोटो। ई योजना में केवल महिलाओं के लिए ही छ, वो केवल भारत की नागरिक होनी चाहिए जो SHG स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हो। ये योजना में ब्याज कम, समय 5 से 10 वर्षीय है और यह योजना नियम शर्ता पर लागू है। ये योजना को मुख्य उद्देश्य अपनी बहनें सशक्त बनाबो, वाका व्यापारी प्रोत्साहित करबो ताकि अपनी बहनें आत्मनिर्भर बन सके। बहनें सरकार न जाना कितनी योजना सु आपने आपनों फायदो कर रही छे, अगर फिर भी आपन सशक्त न बना तो सिर्फ और सिर्फ आपने कमजोरी छे। मु अबला नादा नहीं, दबी हुई पहचान छू, मु स्वाभिमान सु जीव राखू अपना अंदर खुददारी। हाँ मु आधुनिक नारी छू, हाँ मु आधुनिक नारी छू। आज के लिए बस इतना ही, अब दो आपकी रेडियो

और जयपुर, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी

0: में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के और जयपुर यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी
1: चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के

0: धमकियों में खाया हूँ, पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां सकती है। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राय।

0: बेहतर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राय। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
4: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
5: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
3: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लक्ष्मी फिल्म से, इसे गाया शशि और डीजे खुशी ने, गगन आहूजा के शब्द हैं और तर्ज बनाई है शशि डीजे खुशी ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी हो।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये की बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया तो पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954, अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार

1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और

1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954, अचानक कल्याण जी वीर जी शाह

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

0: प्यार वफा,
1: कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

0: लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

0: लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर

कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द, एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना ज़रूरी होता है?
1: नहीं, आज के ज़माने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं हैं, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के ज़माने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर।

अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है, तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफ।

एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी एआई भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सब प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर्स मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, वो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारत।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का कलाम। और अब समाप्त फरमाइए प्रेम बर्बादानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाजों में।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज गुलजार का कलाम, और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था।

0: स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहां व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफ़र तय किया, सुरीला सफ़र, और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: Aibari scored a decisive spot kick to send Morocco through. Earlier, Brazil has entered the round of 16 after a 2-1 victory over Japan in Houston, US. Brazil will next face either the Ivory Coast or Norway on Sunday in East Rutherford, New Jersey in the round of 16. With Neelam's report, this is Jigyasa Pandey.
1: अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी

0: एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित
1: भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। से लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी

0: अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों के शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए।
0: ओ
1: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम ही नहीं
0: नाम
1: लेती।
0: नहीं लेती, और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
1: हाँ,
0: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी

0: तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना, एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे।
1: हाँ।
0: क्योंकि क्या होता है ना, जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनके उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं।
1: हाँ।
0: तो उन्हें गोदने दीजिए, ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं,
1: वो लगा सकते हैं,
0: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
1: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती हैं,
0: बहुत होती
1: तो
0: है।
1: बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स, देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान

0: बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है, और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं, उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
1: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का।
0: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने ज़माने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज़ ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। पर पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि

0: में बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। पर पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नज़र आ रही है। एक साथी लिखते हैं कि बुज़ुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता। हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं। सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
0: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक

0: बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
0: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं, एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए

0: बेहतरीन गाना था, और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ।
1: जी जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आए बेखबर
1: सुनते हैं। हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर ज़ारा का गाना है ना, इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गज़लें सुनते थे और

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर ज़ारा का गाना है ना, इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे, और
0: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओह क्या बात है,
1: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आया, उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा, आपको भेज दूँगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: क्या बात है,
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी,

तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ।

0: और कभी संभलने से,
1: कभी खुद को फिर से खड़ा करने के साहस से।
0: तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहाँ हर पल नई सोच से भरा होगा, हर बात में सीख होगी और हर मुस्कान में एक नई उम्मीद छिपी होगी।
1: दोस्तों फिलहाल लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में। ये रहा आप सभी के लिए आज की शाम का पहला गीत।

कि खुद को थोड़ा बाहर निकालो, समस्याओं भरी इस जिंदगी से खुद को थोड़ा आराम दो, राहत और सुकून भरी इस प्रकृति से, देखो वो फूलों का खिलना और महकना, ठंडी हवा का वो चलना, सुबह होते ही फिर चिड़ियों का चहकना और शाम होते ही फिर मौन धारण कर लेना। प्रकृति की बात निराली, कह जाती है कोयल काली, और मन को भाती उसकी मधुर वाणी। जरा देखो कैसे शाम आती है और लालिमा छाती है, कैसे सुबह होती है और नीलांबर छाता है। वाह, ईश्वर ने भी क्या खूब रचना रची है जो मन को आनंद से भर जाती है। जरा महसूस करो पत्तों का वो फड़फड़ाना, और भंवरों का वो गुनगुनाना, कोयल से बारिश का वो संदेश आना, सावन में काली घटा का वो छा जाना और फूलों पे रंग बिरंगी तितलियां आ जाना। अब मैं आप सबके मन को आनंद से भर जाती है। जरा महसूस करो पत्तों का वो फड़फड़ाना, और भंवरों का वो गुनगुनाना, कोयल से बारिश का वो संदेश आना, सावन में काली घटा का वो छा जाना और फूलों पे रंग बिरंगी तितलियां आ जाना। अब मैं आप सब

थोड़ा डरो ईश्वर से, थोड़ा डरो, अच्छाई का रास्ता तुम चुनो। दूसरों की बुराई से पहले तुम अपने घर में जाको, दूसरों की बुराई से पहले तुम अपने घर में जाको, खुद का बुरा समय आने से पहले तुम थोड़ा जागो, खुद का बुरा समय आने से पहले तुम थोड़ा जागो, खुद में सुधार करके दूसरों में सुधार का तुम ज्ञान बांटो, कि खुद में सुधार करके दूसरों में सुधार का तुम ज्ञान बांटो।

0: बिल्कुल, कई बार हम सोचते हैं कि बैंक खाता तो सिर्फ पैसे रखने के लिए होता है,
1: जी हाँ,
0: लेकिन सच ये है कि आज के समय में बैंक खाता आपकी पहचान, आपकी सुरक्षा और कई सरकारी सुविधाओं का प्रवेश द्वार बन चुका है।
1: और इसी सोच को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई है प्रधानमंत्री जनधन योजना। दोस्तों, आज हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं और ये आम लोगों के जीवन में किस तरह बदलाव जा रही है।
0: बिल्कुल, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश का हर नागरिक, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोग, बैंकिंग प्रणाली से जुड़ सके।
1: बिल्कुल, यानी ये योजना आर्थिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम थी। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोला जा सकता है, साथ ही रुपे डेबिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और पात्रता के अनुसार बीमा तथा ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
0: अब बात की जाए कि इसका लाभ कौन ले सकता है, तो भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 10 वर्ष या उससे भी अधिक हो, जिसके नाम से पहले कोई जन धन खाता न हो, वह इस योजना के तहत खाता खुलवा सकता है।
1: बिल्कुल, 10 से 18 वर्ष के बीच के बच्चे भी आवश्यक शर्तों के साथ इसमें खाता खुलवा सकते हैं। विशेष रूप से गरीब, ग्रामीण, मजदूर, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और वे लोग जिनके पास पहले से बैंक खाता नहीं था, इस योजना के लिए प्रमुख लाभार्थी हैं।
0: जन धन खाता खुलवाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। सबसे पहले अपने नजदीकी बैंक या बैंक मित्र पर जाएं, जहां प्रधानमंत्री जन धन योजना का आवेदन पत्र भरें, पहचान और पते के लिए आधार कार्ड या अन्य वैध दस्तावेज जमा करें।

0: चलिए श्रोताओं, आप सभी को अलविदा कहने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर भी।
1: आज ही के दिन 1936 में मार्गरेट मिशेल का प्रसिद्ध उपन्यास गोन विद द विंड पहली बार प्रकाशित हुआ था।
0: इसके साथ ही आज ही के दिन 1859 में फ्रांसीसी कलाबाज जीन फ्रैंकोइज ग्रेवलेट नाइग्रा फॉल्स को टाइटरोप के चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे।
1: 1999 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टीम फिशर को ने इस्तीफा दिया था।
0: 2002 की अगर बात की जाए तो आज ही के दिन ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर अपना कब्जा किया था।
1: 1964 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े नारीवादी संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन की स्थापना की गई थी।

0: साथियों, इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम यही समाप्त होता है।
1: उम्मीद है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी और हमारी बातों ने आपके दिल में नए विचार जगाए होंगे।
0: कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, हमारी बातें यूं ही जारी रहेंगी। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगली बार युवाणी कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी दोनों रेडियो साथी, मैं हूँ शिल्पा,
0: मैं हूँ अंतिमा,
1: और आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

वन महोत्सव। भेंटवार्ता में सुनिएगा वन महोत्सव का उद्देश्य और जनभागीदारी। संजू कुमार शर्मा, सहायक वन संरक्षक पिड़ावा झालावाड़ से अर्चना द्विवेदी की बातचीत होगी और जानकारी की बातें होंगी अरावली ग्रीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। कल शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी चर्चा वन महोत्सव सप्ताह। डॉक्टर बीसी राय जयंती और पुण्यतिथि, पुरुषोत्तम दास टंडन पुण्यतिथि, हम और हमारा पर्यावरण में सुनेंगे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, चिराग जल रहे युवा डायरी में जेबा से रफिया की बातचीत और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के बारे में जानकारी होगी। और कल शाम 7 बजे किसान साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषक चौपाल। तो ये थी कार्यक्रम रूपरेखा। हम

वन महोत्सव। भेंटवार्ता में सुनिएगा वन महोत्सव का उद्देश्य और जनभागीदारी। संजू कुमार शर्मा, सहायक वन संरक्षक पिड़ावा, झालावाड़ से अर्चना।

0: उदित नारायण अलका याग्निक को सुनिए फिल्म मुस्कान में।
1: सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश

0: सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए। उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और

0: है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
2: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्तशक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में ये समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
3: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है, सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हो, उनको बताना है और बताना ही नहीं, उनको करवाना है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2,000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
4: राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे

0: संवाददाता।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों

0: केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू।

0: ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मानसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योग पीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योग अभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन, NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी

0: जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले की युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार।

ऐसा जताया है। इन दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हिलका माए आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई थोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनियोडो है। लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। बाड़मेर माए आज आंधी चाली। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण।

ऐसा जताया है। इन दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हिलका माए आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई थोड़ा जबरदस्त

0: लेकिन अभी खुश नहीं है।
1: अच्छा, हाँ गुप्ता
0: जी
1: जी,
0: जय माँ। हाँ और सुनाओ क्या है।
1: कार्यक्रम में स्वागत है आपको। और आज को अपना जो विषय है, कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमशीलता, इससे
0: हाँ
1: संबंधित आपको कोई प्रश्न हो तो आप बताओ
0: इसके बारे में हमें समझाओ
1: जी।
0: विस्तार पूर्वक क्या होता है। खैर मैं
1: हाँ
0: बाहर
1: हाँ
0: हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं बाहर हूँ सर।
1: हाँ बिल्कुल, कृषि स्टार्टअप कहीं है और
0: हाँ इसके
1: ग्रामीण
0: बारे में समझ।
1: उद्यमशीलता से कैसा संबंधित है, यह
0: हाँ
1: जानकारी
0: सर
1: आप दे रहे हैं। हाँ डॉक्टर
0: हाँ
1: साहब
0: बताओ सर। कौन जी
1: जी,
2: देखिए, कृषि स्टार्टअप होता है जब भी आपके दिमाग में कुछ भी नया आ रहा है कृषि से रिलेटेड, तो वो आपको एक नया बिजनेस अगर शुरू करना है तो उस नए आइडिया या नया जो आपकी सोच है, जो आपको लग रहा है कि नहीं आपके गांव की समस्या या आपकी समस्या है कृषि से रिलेटेड, तो आप उसको बिजनेस में उतारें और उसको नया कुछ शुरू करें, तो वही होता है कृषि स्टार्टअप। और ग्रामीण उद्यमिता की बात करें तो आपके पास देखिए संसाधन हम लोग गाँव में देखते हैं बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित हैं, तो उन सीमित संसाधनों को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करके आप नया कुछ बिजनेस शुरू करें या फिर कुछ स्टार्ट करें, तो वो होता है ग्रामीण उद्यमी उद्यमशीलता।
1: उद्यमशीलता जी,
2: हाँ जी
1: ये जो ग्रामीण उद्यमशीलता और स्टार्टअप जो है, ये आज की आवश्यकता भी है,
2: हाँ जी
1: क्योंकि जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर जो बेरोजगारी है उन पे भी नियंत्रण हो सके इसे।
2: हाँ जी बिल्कुल। अगर आप कुछ नया देखिए, मैंने अभी बताया कि ग्रामीण उद्यमी उद्यमशीलता का सबसे एक अच्छी चीज़ है कि आप जो भी संसाधन यूज़ कर रहे हो आपके पास जो है वही यूज़ कर रहे हो,
1: बिल्कुल, जैसे
2: तो
1: पशु है,
2: हाँ
1: जमीन
2: डेयरी
1: है।
2: है, डेयरी आपको लग रहा है कि आपके गांव में दूध का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वो आप यूज़ कीजिए और उससे शुरू कीजिए, डेयरी यूनिट खोल लीजिए या डेयरी प्रोडक्ट बनाइए, है ना,
1: जैविक
2: पनीर
1: अपशिष्ट है
2: खोआ। हाँ
1: जी।
2: आपको लग रहा है कि नहीं खेती अच्छी सी है, आप जैविक खेती कर सकते हैं, तो मशरूम का अगर एनवायरनमेंट सही है तो मशरूम प्रोडक्शन

0: तकनीक को इस्तेमाल में
1: हाँ, अगर खेती आपके पास है तो आप उसी से रिलेटेड एक और स्टार्टअप शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है प्रोडक्शन है, संतरे का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसका प्रोसेसिंग शुरू कर दो,
0: बिल्कुल
1: वो
0: डॉक्टर
1: हो
0: साहब,
1: सकता है।
0: अपन आगे बातचीत करेंगे। एक किसान साथी अपना जुड़ पहुंचा रहा है। हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार साहब, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: बीरमलाल,
0: बीरमलाल जी।
2: कालाकोट से बीरमलाल, तहसील।
0: हाँ वीरम जी बोलिए, कालाकोट से।
2: गाय के पशुओं फसल सोयाबीन खेती बाती कैसे
0: हाँ
2: कर।
0: आप अपना प्रश्न साफ साफ बताओ, अपना जो खेती और खेती से संबंधित जो व्यवसाय है उनके बारे में कोई जानकारी आप चाह रहे हो तो पूछो।
2: हाँ, तो खेती सोयाबीन बाती 95 साल। हाँ, उन्होंने कहा तो देवरी यूरिया डाल दियो, वो कहीं कहीं डाल लो। हाँ,
0: अच्छा,
1: उसमें खाद डाल रहे हैं आपने, सोयाबीन लगाई है आपने ना।
0: सोयाबीन की खेती की है इन्होंने, अभी शुरुआत की है, बुआई की है, और उसमें एक तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या डालें, खाद कब कब डालें, और इसके अलावा अब सोयाबीन की बात चली है तो पूछना भी चाहेंगे सोयाबीन से संबंधित, क्योंकि सोयाबीन की बड़ी मात्रा अपने यहाँ होती है अपने जालौर ज़िले में, इससे संबंधित और कौन कौन से स्टार्टअप या व्यवसाय अपने किसान साथी कर सकते हैं
1: हाँ जी,
0: अपने यहाँ होती है अपने जालौर ज़िले में, इससे संबंधित और कौन कौन से स्टार्टअप या व्यवसाय अपने किसान साथी कर सकते हैं।
1: हाँ जी।

0: अपने यहीं मिल वो शुरू हो जाएगा, तो निश्चित है कि यहाँ भी हो सके मंडी चालू हो जाए। आपने स्टूडियो में फ़ोन करो और जानकारी चाहिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, अपन बात कर रहे थे स्टार्टअप और उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो फंडिंग की स्कीम आपने बताई, कुछ स्कीमें हैं जिनमें रजिस्टर करके अपना किसान साथी लाभ ले सके, इनके बाद जो मुख्य बात आवे वो प्रशिक्षण की है, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के कोई भी व्यवसाय अपना किसान साथी शुरू करेगा तो उनमें सफलता बहुत संदिग्ध हो जाए। तो प्रशिक्षण के लिए कौन कौन सा संस्थान है जहाँ से संपर्क करके अपना किसान साथी प्रशिक्षण को लाभ ले सके?
1: अगर झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पे आप केवी के कृषि विज्ञान केंद्र
0: जी
1: झालावाड़, वहाँ से प्रशिक्षण ले सकते हैं। और RCET है और कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो आप यहाँ पे जाके संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी हर कुछ दिनों में इनकी नई नई ट्रेनिंग आती रहती है, तो वो अगर एक बार आप संपर्क करेंगे तो शायद आगे कंटिन्यूअस आपको भी वो कांटेक्ट कर लें।
0: बिल्कुल। और अपना जो युवा किसान साथी है, ये अगर जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का और अपने गांव में आवा वाला कृषि से संबंधित जो अधिकारी है, वे भी समय समय पे गांव में आता रहे, वहाँ से संपर्क करे तब भी लाभ ले सके?
1: हाँ उनसे, लेकिन ज़्यादातर जो, हाँ बिल्कुल उनसे भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो भी यही सजेस्ट करेंगे कि आप KVK में जाके पता कीजिए या फिर जो स्कीम है उसमें स्किल ट्रेनिंग ले सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं, तो वही।

0: द्वारा जनहित में जारी।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: अभी किसान साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के झालावाड़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.2 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको लिए चलते हैं ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के मध्य द ओवल लंदन में खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच की कमेंट्री प्रसारण में, जिसे हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली से केंद्र से। साथ ही आपको बता दी, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मुंबई की कार्यक्रम जारी रहेंगी।
3: जोसेफ जिस स्ट्राइक के साथ खेल रही हैं, वो परेशान करने वाला हो सकता है वेस्ट इंडीज को।

0: निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

0: निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों अभी आप सुन रहे

0: है बस।
1: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
0: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे।
1: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था।
0: अब मैंने गोरा वोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
1: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
0: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है? आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा। बाय बाय।
1: कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना?
1: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानती?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाहा कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल कुछ कहेगा भी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
2: कहूं? कह दूं भाभी? भाभी असल में बात ये है भाभी, भाभी मैं उनसे हाँ? शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया। हाँ,
1: कह दिया
2: भाई।
1: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुण गाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा ले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहा से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ उसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतने कोमल गंभीर था, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से

0: भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहे।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें
1: हैं। पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता, कभी मेरी तमन्ना भी सज कर।

0: लाचार।
1: शैली प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात यह है कि मैं आपसे।
0: जी जी जी क्या?
1: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूं कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साहे के समान आपका पीछा पर आपसे भूल ना सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
0: निलज कही थी, छोड़ इसका ख्याल।
1: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी। कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने।
0: अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, आप शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
1: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसका?
0: लेकिन क्यों?
1: क्यों क्यों क्या? राजा आपको क्यों लव करता है जी?
0: पता नहीं।
1: पता नहीं तो आप उसे क्यों लव करती हैं जी?
0: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
1: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत, मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
0: वो बहुत बहादुर है।
1: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
0: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
1: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
0: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
1: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
0: देखो।
1: देखिए।
0: अच्छा देखूंगी।
1: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या? मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
0: शौक से जाइए, मगर जरा संभल।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

लोकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर

0: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के देशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भर। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का

कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिओ जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कन्हैया जी भाई ये गाना मेरे लिए

0: कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए।
1: के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्य हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया, उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

चलो वे एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बने जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के मध्य द ओवल लंदन में खेले गए T20